ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8 तारीख, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 27 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे।

0: द्वारा राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: वंदनवार

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है कि सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रकाश अवश्य मिलता है। अब प्रस्तुत है।

एफएम 103.9 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब झरोखा के अंतर्गत बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 बजे पेश किया जाएगा भोले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 का समय रहेगा हम है राही प्यार के कार्यक्रम का। श्रोताओं हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं 8:00, 10:00, 2:00, 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर और 11:00। प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुन सकते

दोपहर 1:05 पर, शाम 6:10 पर और 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे और साथ ही रात्रि 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर 1:10 पर और शाम 6:20 पर। सुबह 8:15 पर आप सुन सकते हैं त्रिवेणी कार्यक्रम। 8:30 का समय रहेगा चित्रलोक कार्यक्रम का। 9:30 पर आप सुन सकते हैं आज का अखबार कार्यक्रम। पर आप सुन सकते हैं हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। आज सुबह 11 आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और उसके तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का पंजाबी रूपांतरण आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले किया जाएगा।

दोपहर 12:05 पर आप सुन सकते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। 1:15 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 1:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं सुरीला सफर का। 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी कार्यक्रम। 3:00 आप सुन सकते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 4:00 का समय रहेगा पिटारा का, जिसमें आज आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के। 5:05 पर फिल्म संगीत का आप आनंद उठा सकते हैं। 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे पेश किया जाएगा। 5:30 का समय रहेगा नॉनस्टॉप नगमे का। 6:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गैर फिल्मी संगीत। 6:30 का समय रहेगा अमृत वाणी का। 7:00 आप सुन सकते हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा। 7:47 पर पेश किए जाएंगे पंजाबी गीत। रात्रि 9:00 का समय रहेगा आपके लिए कार्यक्रम का। 9:30 पर आप सुन सकते हैं आज के फनकार कार्यक्रम। 10:00 का समय रहेगा छाया गीत कार्यक्रम का। और 10:32 पर आप आनंद उठा सकते हैं सुर सांझ कार्यक्रम का।

तो श्रोताओं, ये तो है वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। आइए अब आनंद उठाते हैं श्री रामचरितमानस का, सुनते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी

समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही बाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाए।

नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं प्रख्यात तबला वादक निखिल घोष से सुप्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खां की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1987 में संगीत संहिता का

0: कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि पंडित निखिल घोष हमारे स्टूडियो में बजा रहे हैं, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर तबला वादक हैं, जिन्होंने अच्छा सीखा और सिखाया। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि उन्होंने संगीत महाभारती को कायम किया है, जिससे के लोग फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार निखिल बाबू।
2: नमस्कार हलीम साहब।
1: भाई, तबले के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। किसी ने कहा कि भाई हजरत अमीर खुसरो ने निकाला है, कोई कहते हैं कि खब्बे हुसैन जी जिन्होंने पखावज को काटा, और ये कहा कि तब भी बोला, तब से तबला चला रहा है। उसके अलावा अरेबिया में एक तबल नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से भी उसको मंसूब किया जाता है कि उन्होंने निकाला है। अब सवाल ये है कि सिद्धार्थ खां धाड़ी यहाँ जाके लोग रुके हुए हैं कि साहब उन्होंने पखावज को काटा और काट के जब दो टुकड़े हुए उसको खड़ा किया तो कहा तब बोला, तो उत्पत्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: ये तबले की उत्पत्ति के बारे में जैसा आपने सही कहा, बहुत कहावत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारे कहावत ही है, असली में इसका उत्पत्ति यानी साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखा जाए
1: जी हाँ,
2: तो ये नहीं कि पखावज को दो टुकड़े करे
1: जी
2: और करके फिर बोला है।
1: हाँ।
2: दो टुकड़ा करने के बाद तो आवाज ही नहीं आएगी, ये तो सही मानने की बात है।
1: हाँ।
2: और दूसरी बात
1: जी, आपका मतलब इससे है कि वो खिंची अगर कट जाएंगी?
2: हाँ,
1: तो हाँ ये मतलब है,
2: तो खिंची अगर
1: कट गई तो सामने आएगा,
2: ये तो कॉमन सेंस की बात है
1: जी।
2: और ये सारी कहावत ही है
1: जी,
2: मगर इसका खास इसकी इब्तदा
1: जी हाँ
2: कोई इतिहास में अब तक मिला नहीं सही, मगर इतना अंदाजा हो चल रहा है अभी तक रिसर्च चल रहा है, तो जितना तक रिसर्च हुआ उसमें इतना ही मिला कि पुराने जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट था जो ऐसे खड़े बजाते थे ऐसा सीधा
1: जी हाँ,
2: जिसको कहा वो अपने स्कल्पचर में भी है, तो उसको उद्धक कहा जाता है
1: जी,
2: तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था,
1: संबल भी कहा जाता है,
2: संबल भी कहा था, कहते हैं उद्धक भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, ऐसा कुछ दो तीन नाम है, मगर ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखा है दिखने में आता है पुराने स्कल्पचर में
1: जी हाँ जी हाँ,
2: तो शायद वहां से डेवलप होते होते कि तबला
1: इस वक्त
2: शेप लिया
1: जी हाँ,
2: जरूर इसमें बहुत लोगों ने दिमाग लगाया,
1: आपके ख्याल
2: इलाज किया, मगर ये
1: ख्याल में निखिल बाबू
2: जी
1: कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें इसका उल्लेख हो?
2: नहीं, तबला का उल्लेख नहीं है, मगर तबला शब्द
1: जी
2: जो आपने कहा कि तबल
1: तबल जी हाँ,
2: ये तबल जो थे और तबल जंग कहते हैं उसको, जंग में भी अभी तक बसता है
1: जी हाँ जी,
2: आपका मिडिल ईस्ट में तबल है वो ऊंट पर रख के बजाया जाता है उसका, तबल जंग कहते हैं, जंग में बजाया जाता है
1: जी हाँ जी,
2: एक शब्द मिलता है तबल, और एक मिलता है साउथ इंडिया में अभी तक बज रही है ताबील
1: जी,
2: और एक शब्द है टबल मतलब टेबल, जिससे जिसका मीनिंग है फ्लैट सरफेस
1: जी हाँ।
2: अब ये तीन जो सोर्स मिल रहा है इसमें से कुछ अगर मिले पता चले तो
1: पता चलता है,
2: मगर अब तक नहीं मिला सही, अब तक नहीं मिला।
1: अच्छा, आपके ख्याल से कुल घराने कितने हैं, आप कितने घराने मानते हैं, क्योंकि आपने इसमें बहुत परिश्रम किया है, आप इस काम को जानते हैं, आपके ख्याल से घराने कितने हैं?
2: के दिल्ली से पैदा इसका खास सोफिस्टिकेसी इसका खासियत वहाँ से शुरू हुआ, बाद में ये लखनऊ, फिर वहाँ से गया फरुखाबाद
1: जी,
2: और दिल्ली से एक बाइफर्केट हुआ जिसको कहते हैं अजराला
1: अजराला जी हाँ,
2: ये चार खानदान खास
1: जी
2: इस पर ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा कंपोजिशन ज्यादा इन लोगों से ही मिल रहा है
1: जी हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले तबला पंजाब में आया,
2: ये नहीं मैं तो इसके बारे में मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ दिल्ली से ही शुरू हुआ,
1: दिल्ली से शुरू हुआ
2: वहाँ से ही।
1: तो इन घराने में फर्क क्या है जी?
2: फर्क है बाज में
1: जी, यानी कुछ बोलों का फर्क,
2: बोलों का भी फर्क है, बंदिशों का फर्क है
1: जी हाँ,
2: इसका जो कॉन्सेप्ट जिसमें यानी इसका जो तखयुल वो भी अलग है, एक एक एक अलग है, एक एक घर खानदान का अलग है, तो ये खानदान एक एक डेवलप किया बहुत वर्षों का ऊपर से, बहुत लोग आए कंपोज किया बजाया सुधारा, यूं करते करते एक एस्टेब्लिश हुआ बड़े बड़े खानदान जैसा कि दिल्ली अजाला लखनऊ फरुखाबाद
1: जी हाँ। अच्छा, वैसे अपने यहाँ भी जैसे बारह खड़ी हैं अल्फाबेट्स हैं, तो वैसे तबले के भी कुछ अल्फाबेट्स हैं जी
2: हाँ,
1: जो दाएं से निकलते हैं कुछ बाएं से निकलते हैं
2: जी हाँ,
1: तो दोनों हाथ से मिलकर निकलते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे ना और ता, ती और ती, ये कौन से दाएं से निकलते हैं?
2: देखिए

0: तबला और बाया
1: जी हाँ
0: दोनों मिला के हम लोग तबला कहते हैं
1: जी हाँ
0: एक साथ में है, हालांकि बाया या तो डग्गा और तबला
1: जी हाँ
0: और डग्गा में दो ही खास बोल है गट कट
1: घे
0: घे
1: जी हाँ
0: और यही डायना में
1: जी
0: खास पांच शब्द है
1: जी
0: सिलेबल एक ना एक ता एक तू एक
1: ना
0: ना
1: ता
0: ता
1: तू
0: तू
1: ना
0: ते
1: ते
0: और ते
1: और
0: थे
1: थे है
0: मतलब जिस वजह से गले लगता हुआ
1: जी हाँ
0: ये पांच हुआ
1: ये तो
0: पांच और दो मिलके सात हुआ ये सात को मॉड्यूलेशन करके वेरिएशन करके टोटल जितना इस्तेमाल हुआ होता है तबले में 22 मिलता है जैसा आपने स्केल में है 22 श्रुति और सात स्वर यूं ही तबले में है सात बोल खास और 22 इसका वेरिएशन और दोनों हाथ मिला के एक
1: कई बहुत ज्यादा बदला दीजिए
0: जैसे ना और घे मिला के धा हो जाता है ना और घे
1: जी
0: दोनों मिलाया तो धा हो जाता है
1: जी हाँ ये धा है
0: हाँ जी
1: जी हाँ
0: ऐसा ही
1: क और के
0: क और के
1: जी
0: उस

0: स्केल में है 22 सूची और 7 स्वर यूं ही कमरे में है, 7 बोल खास और 22 इसका वेरिएशन, और दोनों हर मिला के एक कई
1: ज्यादा बहुत ज्यादा बदला दीजिए,
0: जैसे ना और घे मिला के धा हो जाता है, ना और घे
1: जी
0: दोनों मिलाया तो धा हो जाता है,
1: जी हाँ ये धा है,
0: हाँ जी
1: जी हाँ
0: ऐसा ही
1: क और के
0: क और के
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: ऐसा कर के
1: जी हाँ
0: और ये
1: ग कर ग एक ही है
0: जी जी ग तो घे ये ग है
1: हाँ अच्छा घे और घे एक है
0: करीब करीब
1: जी है जैसे हम दींग कहते हैं दींग दींग तकेट तकेट ये ग जो है
0: नहीं ये दिन दिन ग नहीं है इसमें असल में कहने के लिए ग उच्चारण करते हैं मगर दिन वो है दिन
1: अच्छा
0: दिन
1: निखिल बाबू जिस घराने के आप शागिर्द हैं उस घराने का एक नमूना फरक्काबादी गत जरा सुनाइए
0: जरूर

0: तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ आना और पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया।
2: संगीत सरिता में आज आपने सुनी विविध भारती के खजाने से चुनकर लाई गई बातचीत। सुविख्यात तबला वादक निखिल घोष से बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खां। मित्रों आइए अब सुनते हैं निखिल घोष की बजाई हुई तबले पर पंचम सवारी।

तबलेट और ताल पंचम सवारी हम सुन रहे थे। बहुत एक थे निखिल घोष। आज संगीत सरिता में हमने पहले सुनी निखिल घोष से अब्दुल हलीम जाफर खां की बातचीत और बाद में निखिल घोष का तबला वादन। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि।

0: के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सविता सिंह का

एक गांव की कहानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी। ये गीत अभी आपने सुना नीला अंबर झूमे धरती को चूमे। आज महान गीतकार शैलेंद्र की जन्म तिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। उनके सरल संवेदनशील और जीवन से जुड़े शब्द हमारे दिलों को छूते हैं। सीधे साधे शब्दों में जीवन की सच्चाई

इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इस संदेश की पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने मुसाफिर फिल्म से लिया था। आवाजें थी लता मंगेशकर और दिलीप कुमार की, शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे सलील चौधरी। मधुमती फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए।

0: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे।
1: बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: और हेमंत कुमार की आवाजों में डिटेक्टिव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार मुकुल रॉय।
1: बारूद एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, और उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: बुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर।

0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है।
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था,
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकने ही नहीं आता।
1: कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी

0: कौन सी देश गुजरिया तू बंधन के। बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, जिसे शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। और इसी गाने के साथ ही आज का भूले मिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम ही रहे प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए इंतजार बस थोड़ी देर।

शैलेन्द्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की थी। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। गीतकार शैलेन्द्र का लिखा एक एक गीत जैसे जिंदगी की किताब का एक एक पन्ना हो और जीवन से ये सवाल लीजिए सुनिए इस गीत में।

मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म से। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इंसान की संवेदनाएं जब शब्दों में ढलती है तो कविता बनती है, और जब कविता आम इंसान के सुख दुख और मोहब्बत और जीवन के संघर्ष की कहानी बन जाए तो लेखनी गीतकार कविराज शैलेंद्र की है। ये बहुत ही प्यारा सा गीत बसंत बहार फिल्म से आपको अब सुनवा रहे हैं। गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जैकि

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का गीत। इस गीत को भी शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनूं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही सदा
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्ररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम ही रहे प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में बहुत छोटा सा एक अंतराल लेते हैं।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जीवन में एक दिल सुहावसानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आवाजें आपने सुनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था गूंज, उठी शहनाई।

का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

फिल्म बेटी बेटे का ये गीत आपने सुनी, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी, शब्द कार्ती शैलेन्द्र। इसी गाने के साथ ही आज का हम ही राही प्यार के गीत कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भूटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला टी

0: एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोड़ देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पर यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है, तो पिछले 12 वर्ष

0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भूटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भूटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ।

0: दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र में कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली, खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है, अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता, क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा। सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही है।

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

समायो मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, कल को बंद कर दूँ।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घूमती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्र लोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि आकर्षक ब्याज दरों के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिनका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आप सभी को सुविधा।

0: से त्रिलोक कार्यक्रम का पहला गाना आपने सुना। आवाजें दी ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट, विद्या गोपाल और यशिका सिक्का की। एनिमी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की,

इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

तनू वेट मनोरंजन फिल्म का है ये गाना आपने सुना स्वाति शर्मा ब्रजेश शांडिल और साथियों की आवाजों में। वायु ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची का संगीत था।

0: शीतल शर्मा, शंकर महादेवन, सुखबिंदर सिंह, मनीष कुमार और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुने थे। संगीतकार थे शंकर एहसान ने, फिल्म का नाम दिल धड़काने। तो चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: Piles Hospital. Call 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चित्र

0: बारूद एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, और उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: बोलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर

0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरे लिए बहुत भारतीय है।
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था,
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकने ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर

संदेशों के पहले आपने हीरो एक्सप्रेस फिल्म का गीत आपने सुना था, सिमर कौर नवी सलाम की आवाजें थी। अब सुनिए ये गाना, फिल्म का नाम है

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जारा एस खान जैस मानक के आवाज में गीतकार और संगीतकार थे तनिष्क बागची और जैस मानक।

0: फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जैस्मिन सैंडल्स सतिंदर सतराज की थी। गीतकार थे सतिंदर सतराज और संगीतकार शाश्वत सचदेव।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेलिब्रेट के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक।
1: सिर्फ एक रुपए में बीएसएनएल का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं बीएसएनएल।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: बहन बाजा बारात फिल्म का ही गीत आप सुन रहे थे। आवाजें मेनी दयाल हिमानी कपूर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्स थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणी।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

घोषाल की आवाज में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, से समीर ने लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत।

कयामी की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे A.R. रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है हम।

आज है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, बलपूर्वक गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति मानवाधिकारों का सबसे क्रूर हनन है, जहां पीड़ित परिवारों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पल-पल संघर्ष करना पड़ता है। आज का ये दिवस हमें इसी खामोश त्रासदी के खिलाफ आवाज उठाने और खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल इस दुख तकलीफ को याद करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। आइए आज हम इन लापता किए गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लें।

ये दिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने और लापता हुए पीड़ितों को स्मरण करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिनके बारे में परिवार आज भी सच्चाई

अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे प्रीतम का संगीत था। सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत आपको अब सुना रही एक बार और अरिजीत सिंह की आवाज है। कुमार के बोल है रोचक कोहली का।

0: सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था, रोचक कोहली ने इस गीत के धुन बनाई थी।
1: सुनिए एक खुशखबरी, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम में। आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: एसबीआई एमएसएमई डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है, जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स ओटीटी पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इट।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लेकर हाजिर है आपके लिए कार्यक्रम आज का अखबार। आज का अखबार। श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, कहते हैं बड़ा बनने के लिए आकार बड़ा होना जरूरी नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए। इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण हमारे आसपास ही मिल जाएगा। गली के नुक्कड़ पर चलती छोटी सी बेकरी से लेकर घर में बना अचार, कढ़ाई बुनाई का काम, छोटी सी वर्कशॉप, फर्नीचर की दुकान, खिलौने बनाने वाले कारीगर, मोबाइल रिपेयर की दुकान या फिर इंटरनेट के सहारे घर से चल रहा कोई छोटा सा व्यवसाय, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। आज का दिन उन्हीं छोटे कदमों को सलाम करने का दिन है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की। लघु उद्योग, नाम सुनते ही लगता है भाई इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जरा सोचिए, हमारी सुबह जिस दूध के पैकेट से शुरू होती है उसमें किसी छोटे कारोबारी की मेहनत हो सकती है। जिस कपड़े से हम तैयार होते हैं उसके पीछे किसी छोटे निर्माता या कारीगर का हुनर हो सकता है। चाय के साथ जो नमकीन खाते हैं उसे बनाने वाले उद्यमी की कहानी भी हो सकती है। यानी लघु उद्योग छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी मौजूदगी वाईफाई जैसी है, दिखती नहीं लेकिन कनेक्शन हर जगह है। दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है, सपने नहीं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हमें याद दिलाता है कि आर्थिक विकास केवल बड़े उद्योगों से नहीं होता। जब छोटे छोटे व्यवसाय मजबूत होते हैं तो स्थानीय बाजार मजबूत होता है, परिवारों की आय बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है।

0: के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे।
3: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, पंजीकरण कैसे करें, माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉग इन करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर लें। एंट्रीज 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जा रही हैं। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में भी कोई ऐसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी है जिसे देश को जानना चाहिए, तो उसे कैमरे में कैद कीजिए और जेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बनिए, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, कार्यक्रम आज का अखबार में आइए अब आपको रूबरू करवा दें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ।

0: भारत और अर्जेंटीना ने अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ाया कदम। लिथियम से फार्मा और कृषि तक सहयोग बढ़ाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट की औपचारिक तैयारियां की शुरू। पूर्व बजट परामर्श बैठकें 22 अक्टूबर 2026 से होंगी शुरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे। रक्षा, व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग पर करेंगे विचार विमर्श। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त सीएसआईआर और यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी की जारी। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी की जारी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लगभग 60% बिजली की जरूरत को अब कैप्टिव सौर ऊर्जा से किया जाएगा पूरा। भारत के वेलवन सेंथली कुमार ने हंगरी में आयोजित पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। और हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में 5वें स्थान पर रहने के लिए भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल

0: वोटर्स के लिए अनोखा अवसर है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं। HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज मीडियो शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सबसे मिलने से नहीं, इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICDC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
1: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको क्षेत्रीय समाचारों से रूबरू करवा दें।

0: 31 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाले मिशन क्लीन पंजाब के दूसरे चरण का पटियाला से हुआ शुभारंभ। पंजाब में 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक 36% कम हुई बारिश, अभी तक 230 mm हुई बारिश। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने अमृतसर और नांदेड़ साहिब के बीच आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। हरियाणा सरकार ने राज्य में कचरे से ऊर्जा बनाने के 4 संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। हरियाणा सरकार ने फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2022 लागू कर फिल्म निर्माण के लिए तैयार किया अनुकूल माहौल। हरियाणा सरकार ने सरकारी डिजिटल ढांचे की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई अनिवार्य व्यवस्था की लागू, अब बिना सुरक्षा जांच ऑनलाइन नहीं होंगे सरकारी पोर्टल। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का समय 1 महीने और बढ़ाया, दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक कर सकते हैं दाखिल। हिमाचल प्रदेश की 4 नदी घाटियों में 6 साल में दोगुनी हुई ग्लेशियर झीलें, हिमाचल प्रदेश सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हुए सतर्क। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में करवट बदलने की संभावना जताई, 3 सितंबर तक बारिश फिर बढ़ा सकती है मुश्किलें। क्षेत्रीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेज और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए अब आपको बता दें क्या कुछ हो रहा है खास आपके आसपास, रूबरू करवाएं आपको स्थानीय समाचारों से।

चंडीगढ़ शहर में डेंगू के अब तक 6 और H1N1 के 16 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। पंचकुला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के पात्र युवा मतदाताओं से 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील की।

चंडीगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस 17 सितंबर तक रहेगा जारी। 31 अगस्त तक बिना किसी लेट फीस के ले सकते हैं एडमिशन्स। शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या और ट्रैफिक जाम के चलते प्रशासन अब लगाएगा मटका चौक, इंडस्ट्रियल एरिया और धनास पुल पर एडेप्टिव सिग्नल।

त्योहार सीजन में पनीर की मांग बढ़ने के बीच चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनालॉग पनीर पर बैन लगाने के लिए प्रशासन से मांगी मंजूरी। स्थानीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

0: इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता पक्षी बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।

0: नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र के साथ।
2: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
2: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, लेकर हाजिर है आपके लिए कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी। आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
1: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह की लिफ्ट बनाए, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराए।
0: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
1: अपनी जरूरत की लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, अन्न हमारे जीवन का आधार है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, हम रोज कितनी आसानी से अपनी थाली में जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं। थोड़ा खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं और फिर वही खाना कूड़ेदान में चला जाता है। कभी घर में जरूरत से ज्यादा खाना बन जाता है, कभी समारोह या शादी में हम अपनी थाली जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं और कभी स्वाद पसंद ना आने पर पूरा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस खाने को हम इतनी आसानी से फेंक देते हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत जुड़ी है। एक किसान खेत में मेहनत करता है, फसल उगती है, उसे काटा जाता है, मंडी तक पहुंचाया जाता है और फिर हमारे घर तक आती है। उसके बाद कोई उसे साफ करता है, कोई पकाता है और तब जाकर हमारी थाली तक पहुंचता है वो अन्न। तो जब हम खाना फेंकते हैं, हम सिर्फ खाना ही नहीं फेंक रहे होते, हम किसी की मेहनत, समय और संसाधनों को भी व्यर्थ कर रहे होते हैं। इसलिए आज की हमारी छोटी सी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे रहेंगी और विषय रहेगा, ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। और अगर आप अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। एसटीडी कोड है 0172। और जब तक आप सोचें कि हमसे क्या बात करनी है, तब तक हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं और आइए बात करते हैं हमारे प्रोग्राम में पहले कॉलर के साथ आज के विषय के बारे में क्या है उनके विचार। हेलो
1: सतीश कुमार जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सतीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: सतीश जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: अन्न तो जी परमेश्वर है, भगवान का रूप है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हमें इसका स्वागत करना चाहिए, इसको वेस्ट बिल्कुल ना करें जी।
0: जी
1: जितना खाना है घर वालों से पूछ लो, आपने कितना कितना खाना, कितनी भूख है उतना बना लो जी घर में।
0: सही कहा आपने,
1: करना चाहिए क्योंकि इसे बनाने में टाइम बहुत लगता है, गैस लगती है, पैसा लगता है। बाकी रोटी बनाना कोई आसान बात नहीं है, भिंडी चीरनी पड़ती है, करेला चीरना पड़ता है, सब्जियां चीरनी भी पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कहा, बिना उनके छीले कैसे आप खा सकते हैं और बना सकते हैं?
1: खाने बनाने वाले को पता चलता है खाना कैसे बनता है।
0: एग्जैक्टली,
1: मैंने कई बार घर में खाना बनाता, मेरे को पता चलता है कितना मुश्किल है खाना बनाना।
0: और जरूरी है कि हम उस खाने को व्यर्थ ना करें, और ऐसा भी रहता है सतीश जी कि अगर हम खाना बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो बचा हुआ खाना, जो अन्न का दाना है, वो किसी और के मुंह में जरूर जाए।
1: जरूरतमंदों को दे सकते हैं हम।
0: बिल्कुल,
1: अब तो रोटी बैंक भी चल पड़े हैं जी, जो घर से ले जाते हैं बचा हुआ खाना।
0: अगर गलती से बच जाए
1: तो वो आपके घर से ले जाएंगे जी।
0: जी बिल्कुल, बचा हुआ खाना। और वैसे भी जो घर में खाना बचता है, कई बार ये आदत रहती है कि उसका हम जरूर कुछ और भी बना लेते हैं।
1: जी जी, जैसे चावल बच गए ना, चावलों के परोठे बना लेते हैं जी हम।
0: दूसरे टाइम काम आ जाता है,
1: ऐसे कर लेते हैं जी।
0: जी कभी दाल बच जाए तो उसके परोठे बन जाते हैं
1: जी, ऐसे कर लेते हैं हम
0: जी। तो यानी कि किसी ने
1: गोभी की सब्जी बची की तो गोभी के परोठे बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, वो जरूरी
1: जी,
0: जरूरी है कि हम कोई भी अन्न का दाना जो है वो जाया ना करें
1: जी। हम तो खीर का पतीला तक ना चाट लेते हैं
0: जी। बहुत बढ़िया,
1: बहुत टेस्टी होता है जी।
0: इसी को कदर करना कहते हैं अन्न
1: जी। अन्न की तो बूंद बूंद कीमती है, उन लोगों से पूछो जिनको मिलता नहीं जी।
0: ये बात बिल्कुल सही कही, उन लोगों से पूछो जिनको मिलता नहीं, उनके लिए अन्न कितना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: है उनकी जिंदगी में।
1: एक बात और है जी,
0: जी
1: अगर हम अन्न वेस्ट करेंगे महंगाई बढ़ जाएगी। सपोज मैं बाजार से कोई 2 किलो भिंडी ले आया
0: जी,
1: किलो बनाई तो भिंडी का रेट तो बढ़ेगा ही, बेच कर दी मैंने।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे बाजार में शॉर्टेज हो जाती है जी।
0: जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी, आपने विचार हमसे विचार अपने साझा किए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।
0: बात करते हैं अगले कॉलर के साथ, क्या है उनके विचार इस विषय के बारे में। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: हाँ नमस्कार सर, राजेश कुमार चौहान जालंधर से।
0: राजेश जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सर,
0: क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में आप?
2: सर जी बहुत बड़ी टॉपिक है चुना है आपने, और ये तो मैं चाहता हूँ कि इस पे तो लगभग हर रोज बात हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अभी
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए अन्न जाया ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम तो खैर बड़े हैं, कहीं ना कहीं समझ है इस चीज की, लेकिन बच्चों को भी इसके बारे में बताना बहुत जरूरी रहता है।
2: नहीं सर मैं हाँ बताता हूँ, मेन कारण क्या है कि इस समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और थोड़ा काम करना होगा। मैंने देखा कि शादियों में खाने से पहले काफी कुछ रख दिया है, टिक्की हो गई, ये वो काफी कुछ रख देते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो उस हाँ जी उससे पेट भर जाएगा तो फिर क्या कहते हैं लोग खाना लेंगे और वेस्ट हो जाएगा
0: जी।
2: तो मेरे को लगता है कि समाज को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और ये दिखावा नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि लोग दिखावा बहुत करते हैं कि हमने इतनी आइटमें बनाई है, खाने से पहले इतना कुछ है, ये है वो है। तो ये जो एक गरीब आदमी होगा या मिडिल क्लास का होगा उसको बहुत, क्योंकि उसको तो करना ही पड़ेगा दिखावे के लिए।
0: बिल्कुल,
2: तो मेरे को ये लगता है कि समाज को आगे आना होगा और ये दिखावा को बंद करना होगा।
0: बिल्कुल, दिखावे को छोड़ के असलियत की तरफ हमें ये जानना पड़ेगा

0: एक खाना बचाएंगे तभी सबको मिल पाएगा।
1: सर एक मैं ना छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इधर हिमाचल में क्या है आपको शायद पता होगा, कुछ नए पहले आप भी खैर होता थोड़ा बहुत, कोई भी सामाजिक समारोह होता है या कुछ भी होता था तो उसमें क्या है कि नीचे चटाई वगैरह बिठा के खाना खिलाते थे, तो जो खाना बांटते थे आप नहीं लेते, जैसे यहाँ शादी में लेते हैं आप, खाना
0: बांटते हैं।
1: हाँ जी,
0: सेल्फ सर्विस भी कहते हैं जिसको, कि खुद ही लें आप अपनी थाली उठाएं और खुद ही अपनी थाली में।
1: हिमाचल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या है तो पुराना रिवाज है, वहाँ पर खाना बांटने वाले लाख होते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले देख लेंगे कि बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा चावल डालेंगे या रोटी डालेंगे, उसको देखेंगे कि वो काम खाएगा या कुछ भी है, अगर नहीं होगा तो फिर से ले लेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो यहाँ क्या है कि जो लोग प्लेट भर ले लेते हैं उनको पता कि मेरा पेट भरा हुआ, पर फिर भी ले लेंगे और बर्बाद कर देंगे। तो ये जो पुराने रीति रिवाज हमारे अगर उस पे चलना शुरू कर देंगे तो बहुत ज्यादा अनाज वगैरह बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं कि जड़ों से जुड़ें जिससे कि आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, राजेश जी कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विचार साझा किया हमारे साथ।
1: ओके
0: दोस्तों, आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं, नंबर 2660615 2660617 और 2660619। विषय है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान, आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन 50 लाख रुपए तक का तुरंत, डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिनी का, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार ट्रॉक प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदो।

0: चंडीगढ़ कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और हम आज बात कर रहे हैं विषय के ऊपर जो कि है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। जानते हैं विचार हमारे अगले कॉलर के, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 13 से बोल रहा हूँ, संजय।
0: नमस्कार संजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ धन्यवाद जी सर। ऐसा कि ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं किसी मेहमानगिरी में गया ना, कहीं पे हम गए हैं, गेस्ट गए हैं, एज ए गेस्ट गए हैं
0: जी,
1: तो उनको मैं पहले बोल देता हूँ कि हमारी इतनी चपातियां बनाना, बस इतनी खाएंगे हम, क्योंकि हम जितने जल परिवार फैमिली है इतने हमारे इतनी चपाती बननी, उससे कि वेस्ट नहीं होता, क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं हमने कितना खाना कितना नहीं खाना, उसको बता दो तो वेस्टेज बच जाती है, वेस्टेज नहीं होता।
0: संजय जी वैसे बच्चों को भी मेरे ख्याल से हमें पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो ज्यादातर खाना खराब कर देते हैं।
1: हाँ जी हमने तो शुरू से ही ऐसे ही कल्चर बनाया, मतलब कि मेरे घर में भी आता है तो मैं तकरीबन पूछ ही लेता हूँ कैसे कैसे, कोई इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। उनको बोलते थे वेस्ट जाएगा, मेहनत इतनी गर्मी में खाना बनाना है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने हैं, तो एक तो दूसरे को पता ही नहीं होता उनमें कितना खाना कितना, कम भी पड़ सकता है ज्यादा भी पड़ सकता है, अपना बता दो तो सब कुछ सेफ रहता है, सबकी भलाई।
0: बहुत बढ़िया संजय जी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हम खाने को वेस्ट करने से बचा सकते हैं, और लोगों में भी एक तरह से ये चीज हम फैला सकते हैं कि वो भी इस तरह की एक्सपीरियंसेस को अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में। और बच्चों को अगर हम बात करें कि बच्चों को अगर समझाना हो, देखिए क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर कई बार भूख ज्यादा लगती है भूख कम लगती है, तो उनको भी हमें ये कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा कि बच्चे उतने ही प्लेट में खाना लो जितना आप खा सकते हैं।
1: कभी ऊपर नीचे हो गया सो में एक बार, बाकी तो कैलकुलेशन
0: बहुत जबरदस्त है, और अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम उस खाने को फेंक दें, हम उसको कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ जी मेरे को तो 40 साल में खुद खाना बनाता हूँ ना, मेरे को तो इससे एक्सपीरियंस है कि खुद ही अभी भी मैं खाना बना रहा था, अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था।
0: वेरी गुड।
1: तो मैं कह ये तो मेरे को पता कितना एफर्ट लगता है किचन में, कितने गर्मी मौसम में, खासकर इस मौसम में कितने एफर्ट कितना सा है, किसी का भी जैसे हमें लगता है वैसे दूसरे को भी लगता होगा।
0: बिल्कुल।
1: मेरे को तो इस मौसम में कोई गेस्ट बुला ले मैं तब नहीं जाता, मैं इस मौसम में किचन में काम करना मुश्किल है, मैं नहीं जाता, हम जाते नहीं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हाँ धन्यवाद।
0: बात करते हैं अगले कॉलर के साथ, जानते हैं उनके विचार।

0: हेलो चंडीगढ़ जी।
1: हेलो चंडीगढ़ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
0: हाँ जी, मैं रामवीर बोल रहे जी, कफीरमत जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से।
1: रामवीर जी, आज हम बात कर रहे हैं, ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: हाँ जी, हाँ जी रितेश जी, आप वो दिन में आए जी, में स्वागत करता हूँ जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो आज का जो विषय है, तो वो अगर हम अन्न को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि अन्न के बिना तो हमारे भगवान का नाम भी हम नहीं ले सकते सर। और दूसरा ये है कि एक भूखे आदमी से अगर हम ये पूछे कि चांद और सूरज में आपको क्या नजर आता है, भूखा आदमी यही कहेगा मुझको ये गोल गोल रोटी नजर आती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भूख में अगर खाना मिल जाएगा तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा सर।
1: सही बात है, उन भूखों के बारे में हमें सोचना चाहिए कभी भी अन्न को बर्बाद करने से पहले कि ये उनके काम आ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं भी हम खाना बच गए तो उसको कहीं ना कहीं जाकर दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास खाना नहीं है या वो लाचार है, किसी कारण से अपंग है,
1: बिल्कुल
0: उनके लिए हम अगर खाना दे देंगे तो हमारा इसमें बड़ा पुण्य होगी।
1: बिल्कुल सही कहा रामवीर जी आपने। और वैसे भी भोजन की कद्र करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अन्न की कद्र करेंगे ना, बंबई की तरफ गया कर दो दिन लगा के आप वहाँ पर एक भी अन्न का दाना आपको नई सड़क मिलेगा, नई डस्टबिन में कोई खाना पा रहा। अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल जाते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, जिससे कि इसका अपमान होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसको कम से कम ऐसी जगह डालिए कि इसको पक्षी खा सके या पक्षी खा सके या जानवर भी खा सके। तो गलत जगह पर ना डालते, अपमान से ना करें, कूड़ेदान में डाल सके।
1: बिल्कुल सही विचार है आपके रामवीर जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान, आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी। आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
1: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह की लिफ्ट बनाए, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराए।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
1: अपनी जरूरत की लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं, ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना विषय पर। जानते हैं क्या है विचार हमारे अगले कॉलर।
3: खाने की कदर तो इस हिसाब से होती है कि मालूम पता होना चाहिए कि जैसे भूखे इंसान को अगर कोई चीज मिल जाए तो कितना मजा आता है
2: जी,
3: और उसको कदर का पता भी लगता है कि हाँ जी हमारे लिए हमारे पास में कदर हो रही है। मेरे को, मैं 2017 से यहाँ पे लंगर चला हमारा आए वीरवार के हिसाब से
2: जी,
3: साईं जी का लंगर चलता है 8 सेक्टर मार्केट में है हमारा, सबको मालूम है इस चीज के बारे में, मगर हमारे पास में 1 किलो की भी वेस्टिंग नहीं है
2: जी। बहुत बढ़िया,
3: और इतना मजा आता है खाने में भी और खिलाने में भी
2: जी,
3: दूसरों को खिलाने के लिए इतना अच्छा मजा आता है जो कि यहाँ पे देने वाले की कमी नहीं है। यहाँ पे देने वाले बहुत सारे, ऊपर वाला सबको इस हिसाब से रखे और सबको अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से, और देने की कोई कमी नहीं है, दे के बहुत सारे जाते हैं, अपने आप दे के जाते हैं, कभी कुछ दे के चले गए कभी कुछ दे के चले गए।
2: अक्सर लोगों में ऐसा देखने को आता है कि कुछ लोग ले लेते हैं लेकिन वेस्ट करते हैं।
3: नहीं नहीं सर, हम अपने आप में यहीं पे बिठा के खिलाते और कोई वेस्टिंग नहीं है।
2: अच्छा, बहुत बढ़िया।
3: साफ सफाई इतनी हिसाब से होती है कि किनका बंदा आके देखते हैं, किनका नगर निगम वाले यहाँ पे आके देखते हैं
2: जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास आपने शुरू कर रखा है, बहुत ही काबिले तारीफ है।
3: और सारी देखभाल अपने अपने अंदर होती है, ये नहीं कि वो किसी चीज के पीछे, अगर कोई आदमी ये चम्मच भी छोड़ा तो उसको कह देते भाई खा लो, हाथ जोड़ के बिनती है।
2: तो ये एक तरह से प्रेरणा स्रोत भी है आप
3: सर। बहुत अच्छा, कम से कम यहाँ पे 1500 बंदा 1500-2000 बंदा खा के जाता है
2: जी
3: आज वीरवार के हिसाब से।
2: चलिए, आपने कॉल किया, हमें इतना अच्छा संदेश दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
3: और सबको इस बात के लिए होना चाहिए
2: जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। बात करते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो
4: हेलो
2: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: हाँ जी नमस्कार
2: जी सर, आप अगर अपने रेडियो सेट को थोड़ा दूर करेंगे या उसकी आवाज कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं रविकांत गर्ग बात कर रहा हूँ जी।
2: रविकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे रवि जी आज के विषय के बारे में? आप,
4: मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो

0: हमने विषय आज का रखा है बहुत ही बढ़िया और जागरूक करने वाला है
1: जी,
0: कि हमको सबको समझना चाहिए कि देश में जैसे भी है आजकल चला हुआ अन्न का, तो हमें इसका सेविंग ही करनी चाहिए, जितना हमें मतलब खाना हो उतना ही हमें बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्या वेस्टेज तो देखो हम भी मैं देखता हूँ कहीं चलो चले जाएं बाहर, मैं तो अपने को परिवार को कहता हूँ बेटे को भी कहता हूँ कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: वहाँ पे जाएंगे मतलब कहते हैं अपना जितना आपको जरूरत है अपने जरूरत के हिसाब से खाना चाहिए, अपने जरूरत के हिसाब से ही बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और वैसे भी देखा जाए ना कि अगर रोज लाखों लोग अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ेंगे तो ये छोटी छोटी बर्बादियां मिलकर बहुत बड़ी बर्बादी बन सकती है।
0: बिल्कुल, देखो आप जो अन्न का करना आप वो बताओगे किसी जरूरत को ही पेटना जाएगा। कोई भी जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को खाना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि कई हम तो चलो जैसे भी बना लेते हैं, हमने ये बना लिया, हम कभी चलो फास्ट फूड भी खाते हैं ऐसा करते हैं, और साथ में चलो इतनी भूख रहती है लेकिन घर में खाना चलो बना हुआ तो फिर वो खाना ही पड़ेगा, वो भी तो इतना खाया नहीं जाता, वेस्ट जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कहीं भी हम खाते हैं तो उसको उस विचार से खाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए कि ठीक है कोई और भी हमारे साथ कोई कहीं भूखा बैठा होगा तो उसको भी जरूरत है आने की, तो उसको उसके काम आ जाएगा वो चीज।
1: जी बिल्कुल सही संदेश दिया आपने, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद। हेलो
1: जी,
0: हाँ जी, मैं एक एक्चुअली और भी कहना चाहता हूँ आपको लेकर, मेरे बेटे का बहुत जो था
1: जी,
0: तो मेरा मेरा मन था कि चलो आपसे बात भी की जाए, और चलो मैं
1: जी बहुत तो आपको जन्मदिन, और कोशिश कीजिएगा कि जो भी मेहमान आपके लिए आपके घर खाने के लिए आए वो वेस्ट ना करके जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही सोचा कि ठीक है अपना ही बनाना है ताकि पूरे मतलब सबका पेट भी भर जाए और वेस्ट भी ना जाए।
1: जी कॉल करने के लिए शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: कंट्रोल।
1: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा फ्लाई ओवर एट SU845 NEC मनी मात्रा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: Hey Chandigarh, this is Sahar Subharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिटी में कोई ऐसी जगह है या कहानी है, ट्रेडिशन या टैलेंट जो इंडिया को पता होना चाहिए? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉग इन करना है और

0: साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हमारे विषय पर, ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। दोस्तों, जरूरी है कि जिंदगी में हम अन्न की कद्र करें, क्योंकि अन्न को भगवान स्वरूप माना जाता है। अन्न ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को बनाती है, हमारे आत्मा को बनाती है, और वैसे भी हमारे वेदों में कहा गया है कि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। तो जानिए कि कितना जरूरी है ये अन्न हमारे लिए, और वैसे भी अगर हम इसकी बर्बादी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अन्न उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसको पूछे उस गरीब से जिसके लिए एक वक्त का अन्न भी नहीं मिलता है, उसके लिए अन्न कितना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि हम अन्न को बचाएं और उस हर गरीब आदमी तक पहुंचाएं, उस जरूरतमंद तक पहुंचाएं जिसके लिए ये जरूरी है।

और दोस्तों अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक छोटी सी आदत अपनाएं, खाना इस संसार के हर व्यक्ति को मिले, खाने को बर्बाद न करें, थाली में उतना ही लें जितना खा सकें, घर में उतना ही बनाएं जितनी जरूरत हो, बचे हुए भोजन का सही इस्तेमाल और अन्न के हर दाने की कद्र करें। इसके साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ समाप्त करें।

अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। श्रोताओं, अब से कुछ देर में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और उसके तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का पंजाबी रूपांतरण हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: The best of entertainment, information, education about the

एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पंपल। जो कहानियां सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: और जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144196 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर। नमस्ते
3: भाई। मुझे पता चला है ना आप टेक की दुनिया से हो ना आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
4: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
3: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
4: सर, अगर हम भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों में कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसा आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, कर्कोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अवंश थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाए।
3: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
4: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजाराजा चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे
0: और छोटी
1: ये तुम्हारी ना
0: और ये मेरी गुड़िया की ना। दादी आपके ना
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।

0: गोलकोंडा चौड़ापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हिरू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हिंदू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नाकंडी वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी जानने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, सिंगल वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भूमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 सालों तक कलिंगा और वो इंडिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी सोच हूँ, और आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी एक बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टैग लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबी होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: हाँ नहीं सर, हम थोड़े बुरी टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है।

नशा मुक्ति हुआ, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनके हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्ति युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी ही इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्त

पर्यावरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ड बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान भी बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जन भागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था

एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेज जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है, तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, ढोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और तेंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही हैं, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी हैं, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास

का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्म में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुष हृदय राज कोरबहिन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए।

0: वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। अब वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देखने कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेली मानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: काफी दिलचस्प लगा। मैं सोचिया कि इस बारे होर ज्यादा जानकारी ली जाए। मैं पता लगा कि यह काम मुंबई विच रहन वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की गल यह है कि कृष्णा जी ने वैबसाइट का नाम ही बहुत सिंपल रख्या है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो यतन किया है उसकी जानकारी थोड़े तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए है। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना सीधे ही कृष्णा जी नाल गलबात की जाए। साथियों, कृष्णा जी साढ़े नाल फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मैनू पता लगा है ना तुसी टेक्नोलॉजी की दुनिया तो हो ना तुसी हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी तुसी टेक्नोलॉजी की वरतों करके हिस्ट्री की साइट बना दी, तो मैनू बहुत उत्सुकता है यह सब किवें होया।
1: धन्यवाद सर। तुहाडे नाल गल करना मेरे लिए बहुत ही वड्डा सुभाग है। तो सर मैं अपने बारे थोड़ा जिहा तुहानू दसा। तो सर मैं एक इंजीनियर सी, फिर मैं MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग की फील्ड चला गया। लेकिन यह सब जदों भी करता सी उदों मैनू बचपन तो ही इतिहास में बहुत रुचि सी। मैं हमेशा हिस्टरी बारे कुछ करना चाहता सी ते इसनू किवें दिलचस्प बनाया जाए। तो मैनू भी यह लगता सी कि जिवें असी हिस्टरी सिखाते हाँ उस विच असी बहुत सुधार कर सकते हाँ, उस विच असी बहुत बदलाव लैके आ सकते हाँ, हिस्टरी नूं एक कहानी बना के लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का अजिहा किहड़ा पक्ष है जिस दे बारे तुहानूं लगा कि इसकी जानकारी ज्यादा तो ज्यादा लोगों नूं होनी चाहिए है?
1: सर जेकर असी भारतीय इतिहास जिवें साडे स्कूलों जां कालजां विच सिखाया जाता है, जिवें तुसीं वेखदे हो, वह कोई एक सामराज जां कोई एक राज उसी दृष्टिकोण नाल उस दे नजरिए तो सिखाया जाता है अते उसनू राज नू असंगता नाल भी विचारिया जाता है। इस चक्कर विच बाकी दे बहुत सारे जो साडे सामराज ने, जो महान सामराज ने, जिवें चोलाज, पालवाज, करकोटा डायनेस्टी सी, कश्मीर विच आहोम सन जिन्हां ने घट तो घट 600 साल असम विच अपनी संस्कृति अपनियां कदरां कीमतां नूं बरकरार रखिया, इस सब दे बारे असी नहीं जानदे। तां मैं सोचिया कि कोई अजिही कोई साइट बनाईए जो अजिहे महान साम्राज्यां नूं भी लोकां तों जाणू करवाया जा सके।
0: कृष्णा जी, तुसी इन्नी मेहनत करदे हो, उंजी तुहानूं काल्पनिक सवाल पुछदा, जेकर तुहानूं इंडियन हिस्टरी दे किसी भी तीन लोकां नाल गलबात दा मौका मिले ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ?
1: ਹਾਂ ਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਲਾ। ਸਰ ਜੋ ਚੋਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੰਗੇਕੋਂਡਾ ਚੋਲਪੁਰਮ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਜਾਈਏ ਜੋ ਅਗਲੇ 1000 ਜਾਂ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੇਮੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜੋ ਹੇਮੂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਸਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 23 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

भोजा फिल्म में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन को। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राम

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें, होंगी दिलचस्प बातें होंगी।

0: करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलिब्रेट के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

हाथों पर बहती है सुरों की सरिता। घूमती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकती?
1: वो मैं
0: अरे क्या वो मैंने, साफ बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: तो वो मुझे सखी सहेली सुनाना।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखिया ही नहीं, सखा भी सुनते ही सोमवार से शुक्रवार

रंग दीवाना समान गहरे क्यों।

हम ना तो खून पानी जीना मरना बेमानी अपना तो खून पानी जीना मरना बेमानी वक्त की हर

अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2 बजे सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी।

लावारिस फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा 3:00। 3:30 पर सुने कार्यक्रम नाट्य तरंग में नाटक आई लव यू का भाग 2। शाम 4:00 कार्यक्रम पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में प्रसारित होगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनिस खान की बातचीत का भाग 3।

5:20 पर पेश किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा 6:30 पर। शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा, जिसमें आप सुनेंगे महावीर चक्र काशीराम सिपाही की शौर्य गाथा।

कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात का पंजाबी रूपांतरण सुनिए हमारे जालंधर केंद्र से आज रात 8 बजे। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित होगा। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 में

0: पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सुबह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने खुशी जाहिर की कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य वाला ये अभियान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्जवल भविष्य के लिए एक सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशाखोरी सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं अपनी चपेट में नहीं लेती, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने उन लोगों की तारीफ की जो नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। श्री मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की कि वे समाज की इस कोशिश में मदद करने के लिए अलग अलग भाषाओं में कंटेंट बनाएं। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक बदलाव के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आपको पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता में एक अद्भुत गुण होता है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह को साफ रखने का संकल्प लोगों की अपनी प्रतिबद्धता बन जाता है तो वो उस जगह की पहचान को पूरी तरह से बदल देता है।
2: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहाँ आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई के लिए की जा रही ऐसी कोशिशें लोगों को लगातार प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में भी बात की जहां 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा करके उसका निपटान किया गया।
2: इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहाँ एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे मौके इस महीने को खास बनाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी का दिन और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर देशवासी में गर्व का भाव भरते हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है।
2: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
0: नमस्कार, ए आकाशवाणी।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए शुरुआत करते हैं फिल्म आए दिन बहार के इस गीत से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर भरपाई से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: अगला गीत है फिल्म महबूब की मेहंदी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने और शब्द रचना है अख्तर रोमानी की।

0: एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन, सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
0: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, जो हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
4: गोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारी श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है, क्या आपको याद आ रहा है वो गाना, आशा भोसले की आवाज में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है, एक स्त्री है जो तड़प कर अपने पति से मन हार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आजाद होने से पहले बल्कि देश की आजादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है। हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई खास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं, क्या ये गाना आप सबने सोचा था, और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है। फिल्म का नाम, गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम। फिल्म तीसरी कसम।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं.
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा.
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी.
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य. आज ही अपनाएं BSNL.
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका. जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा. 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स. 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदें.

0: Miles Hospital. Call करें 9814128667 पर Miles से मुक्ति पाएं।
1: लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वालों को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर है जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे सजमा बैरी हो गए हमार चिट्ठी हो तो हर कोई बांचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियां हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हो तो ये गाना हम सबके लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं। बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे हैं। कितना बताएं और कितना पढ़ें, आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला गाना है, वो फिल्म है जागते रहो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो। सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं

श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखी है एक बार थिएटर में एक बार टीवी पर, राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर और ये हमने पहले भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम याद करते करते जाएगी रंसारी, पर्दे पर अभिनेत्री वैजयंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है। महल के सन्नाटे, जलते हुए दीयों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना, दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थी। वैसे वैजयंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और, तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है, चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए अब बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वीं जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए।

अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?

एम एस एम ई डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिनका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्ट्रा ड्रॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो। SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिनका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्ट्रा ड्रॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।

फिल्म थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें, जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए। कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद है शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से सवाल आपसे पूछ रहे हैं और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह जो हमें अपने अधिकता सिखाते हैं, शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियां भी हैं, संघर्ष भी और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा, बताइए कौन सी याद ताजा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम जरा बूझिए। फिल्म बंदरी, कौन सी याद ताजा हुई और कौन है हीरोइन?

नंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती हूँ पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है। खास तौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नजर आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तो सज धज के। लेकिन ये बोल गाने की हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। जरा हीरो हीरोइन का नाम लीजिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहे तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती मारा राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन। और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

उनको अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है।

0: नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आपको पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप जिनको छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वो सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और BB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भुगरई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर एट

0: आईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरल के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

सपना और प्रीत पराय इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जय किशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणी।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं। अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बुक पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तरत महमूद की आवाजों में, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।

0: उसने कहा था इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उनकी याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: बारूद एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, और उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: बोलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया। एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर।

मुद्दे से मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और इस वक्त हाजिर हूं फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल दिहानवी के बोल हैं, संगीतकार रोशन।

फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल धोनी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमर खेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज।

आखिरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से बुसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवबर्मन। फिल्म के पड़ोसन पसंद करने वाले श्रोता हमारे यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारतीय नाचानी।

मिठेल और प्रगति माझानी की, परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मनंत, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्नों की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूख कादरी, फिरासत हुसैन, मुनवर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम बिहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की। अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोलसिटी एबर का गाने से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना और इनके मित्रगण। गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।

0: बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
1: All right, as you wish।
2: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
2: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
2: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
0: ये आपने कैसे समझ लिया?
2: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
2: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
2: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
0: अब क्या चाहते हैं?

0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें मेरे, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रुक जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितना से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी मैं करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
2: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: Really?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो भी नहीं सकता, हम दोनों से लादान थोड़ी है। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। That's why I love you, darling. तुम भी कहो ना I love you. अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी नहीं चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना?
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured.
1: Okay. ये तो बस मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले इसे बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: ना,
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही है या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सब इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑल राइट, लेट इट कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
2: हाँ, लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझ रहे हो? I hate you, I hate

0: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे
1: उसके बाद रास्ते में तो वो जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
2: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
2: जब देखो तब लो मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना ये झूठी जिद है।
2: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
2: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
2: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
2: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल तुम्हारे ही रिश्तेदार है। कहाँ जा रही हो भाई?
5: देखो तो सही, ये तो काम कर रही है।
4: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
5: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बंद नहीं गया।
4: ये सारी तो
5: कैसी रखी है?
4: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
5: ये तुम क्या कर रही हो?
4: देखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़े झगड़े, लेकिन एक दूसरे की बात तो नहीं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है, उसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
5: बस बस बस, एक मिनट, ये टेबल लो।
4: टेबल किस लिए?
5: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
4: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती।
5: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
4: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
5: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे।
4: नहीं नहीं,

0: कैसे सवाल हो गया? मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
1: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
0: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
1: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
0: इतने जोर से न कहो।
1: ऑल राइट, हाथ जोड़ कर कहता हूँ।
0: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम दोनों ने फोन करने वाले थे ना?
1: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं।
0: छोड़ो मुझे बहुत से काम है।
1: चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: कहूँ तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
1: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
0: तुम कितने हो?
1: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
0: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, घर से चलाने का मतलब यही है कि कुएं पड़े रहना।
1: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो। एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
0: मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
1: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
0: मैं चाहती हूँ कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो।
1: चुप हो जाओ।

0: 自己主張っぽくあるよ、ロナインだと、マンメロ、マンメロでこ、メトロザコリジャロね、ゲロ、ゲロ、ロマンス、アソポシャロ、はい、あ、ちょっと、何ボス。
1: आइए चाचा जी कैसे हैं चाचा जी
2: अच्छी हूँ तुम दोनों कैसे
3: अरे मनोहर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी अरे कौन बोल रहा है अरे रेखा बेटी क्या हुआ
1: अब कुछ नहीं मैं खुश नहीं चाचा जी वो जरा दिल भरा है इसका बस
2: हमें देखकर
1: हाँ हाँ हाँ
2: हमें देखकर दिल क्यों भराया
3: मनोहर सच बताओ क्या बात है
1: अब कुछ भी नहीं ये तो बस ऐसे
2: बिना वजह किसी को रोना नहीं आता समझे
3: सीमा तुम्हारी चाची के
2: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं
3: और रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता मनोहर बताओ बात क्या है
1: अब कुछ नहीं वो भाई रेखा पानी वानी भी लाओगी नहीं जाओ
4: अच्छा हो गया आप लोग आ गए वरना ये तो मुझे मार ही डालते
2: मनोहर बहू को क्या शिकायत है
1: कुछ नहीं वो जरा जिद्दी है बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी
3: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा
1: मैं तुम्हें चाहती हूँ
2: गधा कहने का इस उम्र में शर्म नहीं आती
3: इससे पहले तुमने उसे डांटा था
1: नहीं नहीं गलत मत समझिए थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू मैं तुम्हें चाहती हूँ
3: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह
4: नीचे नीचे पानी
1: इसकी बहन की बेटी लीना लीना
3: कौन प्राण जीवन की बेटी
1: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है यानी कि हाँ वही होगा वही होगा
3: क्या कहा तुमने
1: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी
2: ये लीना वाली बात क्या है
1: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं
3: अब भी लग रहे हैं क्या
1: कमरा खुलने से मालूम होगा मैं खोल कर देखा
2: नहीं नहीं रहने दो इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं जवान लड़के लड़की बैठे हो तो उनको बैठे रहना देना चाहिए
3: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो
1: हाँ हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं बस सिर्फ कहे तो काफी है
2: अरे पागलो ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने
1: हैं कमाल है चाची जी ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है
3: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई चलो रेखा बेटी
4: अच्छी
3: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ
1: हाँ मेरे लिए भी ना भूलना है
2: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी इसे इस तरह क्यों परेशान करती हूँ
1: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा
3: ये बात तो सच कही
2: क्यों तुम क्यों दखल देते हो बीच में
3: अरे मनोहर खूब याद आया भाई हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना ये लो ये लो पैसे लो
1: नहीं नहीं नहीं चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं
2: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए
1: अब लेकिन
2: कहा भी कुछ मत कहो
1: आप भी चाची अरे चाची की चप्पल तू ही आ जाओ मुझे
2: ये मनोहर को आज क्या हो गया तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था
3: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा
2: पागल है मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी
3: ना समझी है और क्या नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था
2: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था
3: अरे जवान है एक कभी कभी मजाक भी सोचता है छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए तुम क्या कहती हो
2: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे
3: नहीं नहीं अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूँ तो तुम एक बार नहीं सौ बार बोलोगी
2: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं
3: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी
2: क्यों तुम इतने मूर्ख

0: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
1: नमस्ते चाचा जी।
0: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
1: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
1: हाँ जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं।
0: अरे तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूँ कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
1: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
0: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
1: आई डोंट बिलीव।
0: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
0: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
1: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
0: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
1: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ?
0: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
1: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
0: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
1: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
0: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
1: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
0: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
1: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
0: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
1: तुम क्या अंधे थे?
0: अंधा नहीं, उदार था। उदार?
1: उदार नहीं, उधार थे, उधार। मेरे आने के बाद ही घर में दो वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
0: चाची जी प्लीज।
1: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
0: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
1: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
2: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
1: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
0: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो लीना।
1: क्या है?
3: तुम्हारे कारण घर में आग लगी है।
1: मैंने तो केवल लकड़ियां लाई थी, आग तो तुम ही नहीं सुलगाई।
4: अरे सब कहाँ चले गए भाई?
1: अंदर है।
4: क्यों?
3: हम जैसा ही हाल है।
4: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठंड गई है?
3: हाँ।
4: वाह मजा आ गया।
1: आपको इसमें क्या मजा आया?
4: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया।
1: मौसा जी सचमुच जोकर है।
3: तुम्हारे मौसा जी हैं?
1: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
3: पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे अनेक फोन करना था।

0: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार तो मैं आपको पिछले हफ्ते दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीनर आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना अपनी कार को डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: हेलो, ऑफ वाइट कलर ही मिलेगा ना? हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके, एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो, पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया, कह दिया।
1: क्या
0: अखिली ने कह दिया कि मैं चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी, हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो, इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्ख लीना। अरे मौसी, तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी, तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा। मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है, वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई। अरे इस पगड़ी ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।

0: बोलो।
1: मैंने इस बात में से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: एक बार नहीं, दो बार।
0: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाची, दो बार मैं जीत गया।
0: और मैं भी दो बार जीत गया।
2: चाची चाची, हमारा निपट गया।
3: तो छोड़ दो,
2: एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
4: जाओ जाओ, रहने दो। तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था।
1: हाँ।
4: जीत की झूठी डीजे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात करी थी, बिल्कुल तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
0: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
4: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं। मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
0: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो। मर गया चाचा।
1: ये क्या कह रही हो?
0: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
4: तुम कुछ भी कह लो, मैं तस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो फिर हाथ ऊपर हो, देखो तो क्या क्या हो गया? मनोहर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो।
0: डॉक्टर
1: क्या हो गया?
0: सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह
0: रमा, सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मुझसे भूल हो गई।
0: एक बार कह दो,
1: मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
0: खाओ मेरी कजन।
1: तुम्हारी, अच्छा इसका मतलब तुम
0: नाटक किया था। बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
2: ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, खोल दे पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांट कर पार्टी बना लो।

0: सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुमिंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो, रोना ही मत, मन में रो, मन में रो। देखो मैं

0: कामनी कौशल,
1: मैंने तो केवल लकड़ी लगाई थी, आग तो तुम्हें नहीं सुलगाई थी।
2: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
1: अंदर है।
0: क्यों? लीना भारती कानडे।
3: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र उपेंद्र सिंह
4: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये जो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जब मोहन राजदीप
5: जहाँ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी दीये हाथ रही थे, इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी

0: रमा लक्ष्मी शर्मा
1: ना आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, और उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: बोलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।

0: बड़ा है
1: कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: गोलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।

0: मदर, मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है, तो टेक्निकल मदर मेरी विभुत भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी में बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकने ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारे।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माय ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई ये ना कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये ना कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इस

0: पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा
1: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
0: जब मैं वहां से लौट के आया, दो तीन साल यहाँ का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना
1: जी,
0: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
1: ये एनएसजी से लौटने के बाद
0: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया मुंबई में आने के बाद। तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है
1: जी बिल्कुल।
0: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है, वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुड़िया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
1: वाह वाह,
0: 10 अक्टूबर 1987।
1: गजब,
0: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है
1: जी जी।
0: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
1: ओहो,
0: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 400-450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
1: सयाजी शिंदे थे,
0: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेला, ये सारे लोग थे।
1: वाह,
0: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी का जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसा जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा, या इवन देश में भी, हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसा ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है। एनीवेज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे, जो भी कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजुअली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुलो देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी।
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने, युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ दिया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या

0: एक्सपीरियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा? तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के दो तीन ये रखे, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया यार, जिसकी मैं खोज कर रहा था
1: वो
0: शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया। हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज हैं। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलुआ में अलग, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो एनएसडी रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, जुर्वा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको
0: रोक रही ज्यादा था? मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुलक देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बातें या एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही है। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी।
0: भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के
0: जी। जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम मुड़िए टू और पड़े नहीं, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की, तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी। मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो ऐसा लगता है हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार 4-4, 5-5, 10-10 sentence, तो हमने ये तय किया था कि एवरी डे 10 words नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे, तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब।

0: उनके घर वाले। और एक होटल वहां, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैनोनर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतीले बर्तन समेटने लगा। तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैनोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी, अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी। तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। और इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30 बज गए और गांव में देहात में 9:30 बजे तो रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाएं तो कहाँ गए? तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते है ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई। तो बोली आप क्या करोगे? तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाओ कॉफी बनाओ। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, एक घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई, मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई क्यों, कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर मैं लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है या सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
1: रेत
0: के ऊपर। पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची और हम ऐसा कैसा एक दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए बस में जाए जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था

0: उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं, यही बात है। वो
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: के नाटकों की बातें चल रही थी वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूं जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहां आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर,

0: रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा, उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
1: जी।
0: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
1: जी।
0: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
1: जी।
0: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लोअप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
0: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है तो। खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज होने के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कई जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो वो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, ये एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते हैं तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए हैं। तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम एक कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले
0: पतले वामन केंद्र, बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने यह तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको।

0: उद्घाटन वगैरह होना था, वो हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और एक डेढ़ घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से जो पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था, तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का। और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो। और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्र हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने
0: कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरी रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके,
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का।
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाए। तो मेरा जो साइन है वो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम उनकी मार्केटिंग के लिए है। ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहां बर्थडे होता है उसको कहां मालूम है। हाँ, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता।
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेल होता। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहां ऊपर आए, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी।
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब। तो
0: मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषक काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी,
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है। उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो,
1: अरे भगवान
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो

0: बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार इतने दिन का महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे। बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे आप रुकेंगे तो फिर मैं उतरा। वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ती जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूं।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूं नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को। पर वाकई वो जब एक दिन आपके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूं सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं। रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया मेरे घर में कि माताजी पिताजी चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी। कुछ लोग अकोला से आ गए तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी। और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते हो, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले। तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है।
1: वाह वाह।
0: मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने जुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, यहां इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आया ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणा ही थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया वो। तो वहां पहुंचे हम तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी
0: जो उन्होंने ही मोपलवार जी ने, तो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर

0: उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह,
0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह,
0: 42 रुपीज।
1: जी जी,
0: ये रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मुपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुमका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माता जी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहां जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारी एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब पकाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों

0: से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता है, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थायी प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गया है। इससे पहले भारत 57 टन अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में शामिल हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। वहीं बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब बचाना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला खिताब में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए शुरुआत करते हैं फिल्म संघर्ष के इस गीत के साथ। आवाज दी है सोनू निगम ने, संगीतकार हैं जतिन ललित और शब्द हैं समीर के।

इस गीत के बाद अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनिए फिल्म जोश का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आखिर में सुनते हैं फिल्म साजन से ये गीत, जो गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार, यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप

लेना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरे पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। ये बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्दी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं

हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्र को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। ये जी प्रस्तुत है प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे। शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

इस गीत के साथ हमारा प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे अब संपन्न होता है। जाते जाते आपको बता दें इन फिल्मों के नाम जिनसे आज आपने इस प्रोग्राम में सुने कुछ गीत। वो फिल्में हैं

गीत के साथ हमारा प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे अब संपन्न होता है। जाते जाते आपको बता दें इन फिल्मों के नाम जिनसे आज आपने इस प्रोग्राम में सुने कुछ गीत। वो फिल्में हैं राजा हिंदुस्तानी, इश्क, टक्कर, प्यार किया तो डरना क्या, बादशाह और बादल। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान में आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे

0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता है। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: अरोड़ा प्लाईवुड
6: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
7: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम। शूट

ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए विभिन्न भाषाओं में संगीत में नारे और धुनें बनाने की अपील की। श्री मोदी ने त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम स्वनिधि योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कैथल के गांव द्योरा में बनने वाले आनंदम वृद्ध सेवा आंगन का शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने खुशी जाहिर की कि नशामुक्त युवा और नशामुक्त भारत के लक्ष्य वाला यह अभियान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। यह भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की तारीफ की जो नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। श्री मोदी ने कंटेंट क्रिएटर से अपील की है कि वे समाज की इस कोशिश में मदद करने के लिए अलग अलग भाषाओं में कंटेंट बनाएं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आपको पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता में एक अद्भुत गुण होता है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह को साफ रखने का संकल्प लोगों की अपनी प्रतिबद्धता बन जाता है तो वह उस जगह की पहचान को पूरी तरह से बदल देता है।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवारी, जहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवारी। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई के लिए की जा रही ऐसी कोशिशें लोगों को लगातार प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त महीना देशभक्ति के साथ कई रंग लेकर आया है और कई लोगों को इसे खास बनाया है।

0: तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने इस बार त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए भी प्रेरित किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना का

0: देश की बेटियों के सपनों की उड़ान जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक सिंगल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने

0: संस्था है और यह छोटे उद्यम या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करती है। पत्र सूचना कार्यालय ने नागरिकों से ऐसे दावों के झांसे में न आने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में सर्व जन सुखाय न्यास की ओर से वृद्धजनों के कल्याण एवं सेवा के लिए गांव द्वारा में बनाए जाने वाले अनंदम वृद्ध सेवा आंगन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्डा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने इस आश्रम के लिए अपनी संपत्ति दान देने वाले प्रोफेसर एस एन मंगला के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा समाज सेवा में जरूर लगाना चाहिए, युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने वृद्धाश्रम के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कल्याण सड़क पर बनने वाले एलिवेटेड ट्रैक को लेकर कहा,
1: जब तक मेरे पास से ये सारा काम था उस समय तक मैंने उसका रिव्यू किया था 2-3 बार, क्योंकि वो सड़कें इतनी कम दूरी होंगी और उसका एलिवेशन, उस एलिवेशन के लिए जितनी जगह चाहिए ग्रेडियंट का, जैसे जगह कम थी, अब उसका कोई नया प्रपोजल बना करके कोई रास्ता निकलेगा तो दिखाएंगे, क्योंकि कई सड़कें हैं और सड़कों पर बने हुए फाटक बना हुआ। योजना तो यही थी जैसे कुरक्षेत्र में हुआ, जैसे रोहतक में हुआ, यानी लाइन को ऊपर उठा करके और फाटक जितना उसको बंद किया जाए और सब सड़कों पर अंडरपास बन के निकले।
0: हरियाणा में आज विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पलवल में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने कहा कि श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। जींद में उचाना से भाजपा

बात कार्यक्रम समाज के हर वर्ग में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। पानीपत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम से सकारात्मक सोच, जन भागीदारी और सेवा की भावना को बल मिलता है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री सबका मार्गदर्शन करते हैं। देश में जहां जहां नए आविष्कार हो रहे हैं, नई योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, युवाओं द्वारा नए नए कार्य एवं आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, वो सब बताकर सबको

अनुसार भारतीय मानक संघ को देश भर में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिन बाद लागू हो जाएंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए विभिन्न भाषाओं में संगीत नारे और ध्वनि बनाने की अपील की। श्री मोदी ने त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम स्वनिधि योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री

0: देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: बिजनेस लोन अप्रूव होया, हुण होवेगा वड्डा स्टूडियो, नवा कैमरा, नवीं लाइटा, लगे हाथ नवी कार भी ले लै, उसे लोन नाल ना। लोन ले गए काम ले ही वरतो, समय ते किश्तां दा भुगतान करो, क्रेडिट स्कोर वधाओ अते अगला लोन आसानी नाल प्राप्त करो। कार नहीं तां मेरी फोटो ही ले लै। तुसी कौन?
3: आरबीआई कहिंदा है
2: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
4: नमस्कार, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ

0: स्थान लाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत ले नशा मुक्त युवा मुहिम देश भर में तेजी नाल अग्गे वध रही है। आकाशवाणी के अपने मन की बात प्रोग्राम में श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग खास करके नौजवान नशा मुक्त युवा तो नशा मुक्त भारत मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को नशा मुक्त भारत लिए शक्तिशाली नारे बनाने नौजवान संगीतकारों को नशा मुक्त जीवन का संदेश देने वाले गीत लिखने की अपील की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप एक पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप

0: शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी किया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना राही लखा अर्थन नेता कथा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश ने हथियार सुख में कुलार देश पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकल त्योहारों के इस दौरान लोकल फॉर लोकल की हिमायत करने के लिए अपील की थी।

0: हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 137 दिशा महाली जिले के हल्के खबर के पिंड चिंदौड़ी विखे विशेष समागम करवाया गया। इस मौके खास तौर पर पंजाब भाजपा के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने भारतीय आदमी धरत्रा ने मन की बात के ध्यान सुनिया। इस उपरांत श्री ढिल्लों ने संबोधन करते हुए कहा कि मन की बात सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं सगो राष्ट्र निर्माण जनता की हिस्सेदारी और सामाजिक जागरूकता का एक प्रभावशाली मंच बन चुके हैं। श्री ढिल्लों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने नशे के मुद्दे निभाया तो नशा मुक्त भारत अभियान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस नशा मुक्त मुहिम के सबसे वधेरे लोग पंजाब के हैं क्योंकि पंजाब इस समय नशे की गलती नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने हर वर्ग में इस मुहिम का हिस्सा बना के नौजवानों ने नशे को बचाने का सदा दिता तो कहा कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत मुहिम का साथ दे के देश के नौजवानों का राशन कार्ड बनाने की लोड़ है। पंजाब के सनत के व्यापार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने दस कि सूबे के सनत के सिलसिले अब इस विश्वव्यापी सदरथाव में बड़ा खुलावा देने लिए पंजाब सरकार ने विश्व पदरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सहूलत सूबे के सनती केंद्र नजदीक प्रदान करने वास्ते नैशनल टेस्ट हाउस NTH पाईवा लिखी थी। यह पाईवा में तालमेल लागतों के मारे उत्पादों के निर्माण से लगन वाला समय घटाने के बरामद करने बेहतर लाभ यकीन बनाएगी। सूबा सरकार के व्यापार से सनत विभाग के NTH सरना ने पाईवा की बेंगलुरु में NTH के 115वें स्थापना दिवस समारोह दौरान की गई। इस समझौते के दस्तावेजों का सनत के व्यापार विभाग के डायरेक्टर श्री जसप्रीत सिंह और NTH डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लोक कुमार श्रीवास्तव दरमियान वटांदरा किया गया। इस पाईवाली का स्वागत करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के अन्य सैनिक के बरामद कर गुणवत्ता रही विश्व पदरी बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं। इस समझौते के हिस्से वजो मॉडर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जलंधर विखे एक अति आधुनिक NTH लैब स्थापित की जाएगी जो कि लुधियाना अमृतसर और जलंधर के समुद्री केंद्र में सेवा मतदान करेगी। खबर आकाशवाणी को सुन रहे साडा एक्सएलडीए @9800 पंजाब के समाजिक सुरक्षा स्त्री और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस कि आश्रित तैनात बच्चों सुरक्षित बचपन लेकर सिक्ख्या से सम्मानित जीवन यकीन बनाने लिए माली साल 2026-27 दौरान सूबा सरकार वालों 432 करोड़ रुपए तो वाधा बजट प्रबंध किया गया है। इस मुतल 181 करोड़ 3 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री ने दस कि इस योजना तहत सूबे के अजिहे करीब 2,45,000 बच्चों नियमित माली सहायता दी जा रही है। यह सहायता उन्हें पढ़ाई रसम दिया लेना और बेहतर भविष्य लिए मजबूत आधार मनी देंगे। भारत के सब तो महान खेल शख्सियतों एक हॉकी के जादूगर के नाम जाने जाते मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन मौके 29 अगस्त देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पंजाब भर में वख गतिविधियां कराई गई। इस संबंध में श्री नाजवा के प्रवीण कम वाले संगठन क्षेत्रीय दफ्तर लुधियाना ने आज एक साइकिल रैली कराई। श्री सौरभ स्वामी क्षेत्रीय प्रवीण कमिश्नर की अगुवाई हेठ रैली SPS नगर लुधियाना के प्रवेश निधि इनक्लेव तो शुरू हुई और लुधियाना के प्रवेश निधि इनक्लेव के पार्क में समाप्त हुई। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला विखे भी राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हुआ। उधर खेल विभाग चंडीगढ़ प्रशासन वालों 28 अगस्त 2026 तक 3 दिनों के राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह संडे जन साइकिल साइकिल प्रोग्राम नाल समाप्ति हुई। कपूरथला जिला प्रशासन वालों श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश

0: तेरह दशमलव रैनफॉल क्वालिटी मन संकल्प स्वरूप कराई जानी है। इस मैराथन में क्वारियन राज प्रदीप डिप्टी कमिश्नर वेन्द्रपाल सिंह बाजवा ने चाल संभाला। यह मैराथन सुबह 6 बजे गुरु नानक स्टेडियम से शुरू होगी व माधव होटल में जैवी तिवारी स्टेडियम स्टेडियम की समाप्त होगी। कल जलंधर में शानदार नाटकीय और संगीतक पेशकारी हमारे राम का मंचन किया गया, जिसमें दर्शकों ने बहुमान बनाया। सीटीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर कैंपस की इस पेशकारी ने देखने लिए बड़ी गिनती लोगों ने शामिल की थी। पंजाब के मुख्य सचिव के पी सिन्हा ने जलंधर विखे करवाई जा रही हमारे राम नाटक की पेशकारी दो दूजे दिन दर्शकों में शामिल होकर शो का आनंद माना। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत से जोर दिता। उन्होंने नौजवान संगीतकारों को नशा मुक्त जीवन का संदेश देने वाले गीत लिखने की अपील की थी। पंजाब भाषा प्रधान जगत सिंह ढिल्लों ने हर वर्ग में नशा मुक्त भारत मुहिम का हिस्सा बनाकर नौजवानों में नशे को बचाने का सदा दिता। पंजाब सरकार वालों विश्व पदरी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सहूलत सूबे की समर्थन केंद्रों में मदद नसीब प्रदान करने वास्ते नेशनल टेस्ट हाउसा फैलाएगी। इस नाम ही साधा एक बुलेटिन खत्म होंगे। नमस्कार।
1: एक कहानी एक हाउसवाइफ ते वो भी अंतरात्मा दी।

0: करो। नहीं, पहला बजट बनाओ, फिर छोटिया छोटिया बचता नु बैंक च बचा के रखो, फिर पैसिया नु वध दे रखो। वड्डी आई हुण जा लैणे
1: हर जे दिंदा है
0: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
2: आकाशवाणी

इस शिवदिन मंगी साडा आज दा प्रोग्राम अमित बाणी हुन समाप्त हुंदा है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
0: ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
4: ਪਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ

का पाते हैं, जो हर कदम पर एक नई राह बनाते हैं, हर जंग में फतेह आप होने का हौसला भी रखते हैं। तो मंजिले मकसूद फिर नहीं जाती हैं, लहू का कतरा बेशक मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कहकशां के नजारों से रोशन होती ही राहें। तो इस मिट्टी में सांस लेती जिंदगानियां बेशक कर्जदार हैं उन शहीदों की, जिन्होंने मादरी वतन की मिट्टी को अपने लहू से सींचा है। शायद इसीलिए हवाएं भी थम थम के चलती हैं, आसमां सिजदा करता है, फूलों की डालियां कदम बोसी को तरसती हैं और चारों दिशाएं इनका इस्तकबाल करती हैं। तो दुश्मन से लड़ी गई सन 1962 की जंग के शेर दिल सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा है हमारे आज की इस कड़ी में। हम सलाम करते हैं भारतीय सेना के धाकड़ योद्धा सिपाही कांशीराम को।

लीजिए हमारा कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जंग मैदान की जानशीनों के मकां और होते हैं, सरपरस्त वतन परस्तों के निशान और होते हैं। साथियों, जानशीन वतन से मोहब्बत करना इबादत से कम नहीं। इस राह में राहबर बने फौजी साथियों को न रेत की आंधियां ही डरा सकती हैं, न बादल, न बिजली का खौफ होता है। चट्टान बनकर जो तूफान का रुख मोड़ देते हैं, आसमान की बुलंदियों में बसेरा होता है। न गिरने का डर, न तूफान

सिपाही कांशीराम का जन्म तत्कालीन अविभाजित पंजाब के मंडी जिले के दुहान गांव में हुआ था, जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग का सौंदर्य है, जिसकी सीमाएं भारत से अलग हुए मुल्क से लगती हैं। 1947 के उपरांत बरतानवी भारत के पंजाब प्रांत को बहावलपुर राज्य से जोड़ा गया। सतलज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम से जुड़ा कछार का कुछ इलाका एक ऐसी जगह जहां फिजाओं में गुरबानी की निर्मल मिठास घुलती रहती है। अध्यात्म की दृष्टि से ये बेहद पावन स्थल भी माना जाता है, लेकिन प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में आज भी इस क्षेत्र का सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है। तो यकीनन इस क्षेत्र ने प्राचीन काल से ही इतनी जंगें लड़ी हैं कि किस तरह भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को महफूज किया जा सके, जिससे दुश्मन के इस रास्ते भारत में दाखिल होने का सिलसिला थम जाए, ये भी कई बार सोचा गया। जाबाज सिपाहियों और देश के निगहबानों की ये धरती, जिसने समय समय पर ऐसे फरमा बरदार बेटों को माँ भारती को दिया, जिनके नाम के खौफ से ही दुश्मन का गला सूख जाता है, किसी मिट्टी की सपूत कांशीराम, जिनके पिता नरोत्तम राम भी सैनिक रह चुके थे, तो एक सिपाही की सरपरस्ती और शिक्षा दीक्षा के बीच कांशीराम की परवरिश हुई। बड़े होने पर वही रोब, वही रुतबा और वही शान जो उनके पिता में थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरी कर सेना में जाने का मन बना चुके कांशीराम ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और मंजिलें तय होती चली गईं। उनके माता पिता और खुद कांशीराम का सपना सच हुआ और वो देश के विभाजन के बाद भारतीय ब्रिटिश सेना से इंडियन आर्मी का रुख करते हुए 18 जनवरी 1958 को पंजाब रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में शामिल हुए। उनकी काबिलियत को भारतीय सेना में परखा गया और कई मोर्चों पर उन्हें तैनात भी किया गया, जहां उनकी अगुवाई में उनकी सैनिक टुकड़ी ने फतेह पाई। दुश्मनों से टकराने, उनसे लोहा लेने का सिपाही कांशीराम का फन मेरा

0: जो आप सुन रहे हैं वो भारती से। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी टीम का। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉक्स प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।

विविध भारती से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। सन 1962 में भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की सरहदों की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बेहद संवेदनशील हो चला था। उगते सूरज की भूमि कहलाने वाले अरुणाचल प्रदेश, जिसके दक्षिण में असम और नागालैंड की सीमाएं, पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा पर भारत की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे बड़े संवेदनशील क्षेत्र, जिस पर शत्रुओं ने हमेशा ही टेढ़ी निगाह रखी। सन 1947 देश के लिए आजादी का पैगाम लाया। इससे पहले देश को खोखला करके बरतानिया हुकूमत के चर्चे दुश्मनों की गली में आम थे। लिहाजा भारत से सटी उत्तर पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी गिद्धों की तरह मंडराते दुश्मनों को समझा जा सकता था। और पाने और खाने से न परहेज न ग्रेज। एक तरफ स्वतंत्रता और खुशियों की लहर और दूसरी तरफ सरहद पर हलचलें तेज थी। दुश्मनों की घुसपैठ का सिलसिला थमने का नाम न लेता। लिहाजा कई बार उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी मैकमोहन रेखा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC भी कहा जाता है, जो भूटान से होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, जिसका उत्तरी पूर्वी LAC और सटे इलाकों पर शत्रुओं द्वारा खुलेआम उल्लंघन होता रहा। बार बार दुश्मन इस रेखा के आसपास चहलकदमी करता, आगे बढ़ता और फिर मुंह की खाकर लौट जाता। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खतरे के बादलों को मंडराते भारतीय सैनिक भी देख रहे थे और समझ भी रहे थे। इसी के मद्देनजर इन सीमाओं पर भारतीय सैनिकों की गश्त बढ़ा दी गई। फिर भी सीमांत अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में दबी आग सुलगती ही रही और सन 1962 के शोलों में तब्दील हो गई। सितंबर अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश की कई सीमांत चौकियों पर दुश्मनों ने धावा बोला, जिसमें थांगला से होते हुए ढोला चौकी, नमकाचू नदी के दोनों किनारे, बमला पास

वालों और किबीटू सेक्टर इत्यादि थे, लेकिन इस जंग ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि दुश्मन की भारी तादाद भी भारतीय सैनिकों के हौसले पस्त करने में नाकाम थी। ये कुछ ऐसा ही था कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है।

सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश, जहां 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी चोटियां और नमक का रेगिस्तान है। यही स्थान इस युद्ध का गवाह बना, जहां पंचशील के सिद्धांतों, संधियों, सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों और भाई भाई के नारे की आड़ में खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सन 1954, 1959 और सन 1960 की वार्ता उनके नियमों को ताक पर रखकर सन 1962 की जंग को अंजाम दिया गया। इसी साल के शुरुआती महीने से ही दुश्मनों ने झड़पें तेज कर दी। पत्थरों और धारदार हथियारों से एलएसी के सभी नियमों को तोड़ते हुए नियंत्रण रेखा को पार करते हुए हमले तेज कर दिए गए। अक्टूबर सन 1962 को दुश्मन ने सोची समझी चाल के तहत हर तरफ से हमले शुरू किए। भारतीय सैनिकों को मोर्चे पर तुरंत तैनाती और रवानगी के आदेश हुए। यकायक हुए इस हमले में दुश्मन ने ऑटोमेटिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया, जिसके मुकाबले परतंत्रता की बेड़ी से उभरे भारतीय सैनिकों के पास हथियार कम आधुनिक थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौसम की मार, लेकिन ऐसी जंगों से दो चार हो चुके भारतीय सैनिकों के हौसलों की परवाज बुलंद थी।

0: जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है।

0: जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। इस जंग के मद्देनजर फौलाद का सीना रखने वाले, दुश्मन की आंख में आंख डालकर उन्हें शिकस्त देने वाले भारतीय सेना के हुनरमंद सिपाही सिपाही कांशीराम की तैनाती नेफा में सिंह जोंग की चौकी पर की गई। जंगी हवा के रुख को कांशीराम भी भाप चुके थे। अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ अपनी पोस्ट पर 2400 घंटे सतर्क थे। उन्हें अंदेशा था कि हमला कभी भी किसी भी छोर से हो सकता है। यकायक 10 अक्टूबर सन 1962 की सुबह लगभग 500 दुश्मन सैनिकों ने इस चौकी पर तेज रफ्तार हमला शुरू किया। मुहैया असलाहों, राइफल और ग्रेनेड्स के साथ सिपाही कांशीराम दुश्मन की जानिब बढ़े। बंकर नुमा इस पोस्ट पर कुछ भारतीय सैनिकों को मोर्चे पर तैनात पहले से ही कर दिया गया था। आधुनिक हथियारों से लैस शत्रु सैनिकों ने भारी तादाद में गोलाबारी शुरू की।

विक्रम अपने सैनिकों के साथ हमलावर थे। आगे बढ़ते सैनिकों को अपना निशाना बनाते हुए अपनी लाइट मशीन गन का मुंह शत्रुओं पर खोल दिया। अपनी जान की बाजी लगाते हुए बेखौफ आगे बढ़ते रहे। कम से कम भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचे, ये कश्मकश भी थी और चुनौतियां भी। इसके साथ ही अग्रिम चौकी को भी महफूज रखने का जिम्मा कुछ ऐसा बंदोबस्त, कुछ ऐसा चक्रव्यूह कि दुश्मन इस घेराबंदी से निकल ही ना पाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ दुश्मनों

सेना साधते गए सिपाही कांशीराम और कई दुश्मन सैनिकों को मौत की घाट उतारा। इस जंग में कुछ भारतीय सैनिकों का साथ छूटा जिन्होंने मौत को गले लगाया लेकिन दुश्मन को पीठ न दिखाई। कांशीराम अपनी चौकी के रास्ते को प्रभावी ढंग से कवर करते हुए शत्रुओं को आगे बढ़कर निशाना बनाते हुए कभी जख्म सीने पर खाते रहे तो कभी शत्रुओं पर भारी पड़ जाते। दुश्मन आगे बढ़ता तो लेकिन उनकी पैनी निगाह पड़ जाती, उसे वहीं ढेर कर बड़ी फुर्ती और चतुराई से अगले मोर्चे पर डट जाते। शत्रुओं ने अपने ही सैनिकों को तिनकों की तरह बिखरे देखा। इस बीच सिपाही कांशीराम भी बुरी तरह जख्मी हुए। इस तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई से दुश्मन बौखला गया और जंग के मोर्चे पर अपने पैर उखड़ते देख शत्रु सैनिकों ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा और इस चौकी से भाग

परशुराम के कंपनी कमांडर ने जब उन्हें बेहद घायल अवस्था में देखा तो उन्हें मोर्चे से हटने और उपचार के लिए सेना के कैंप वापस जाने की सलाह दी। चोटें गंभीर थी, खून का रिसाव लगातार हो रहा था, लेकिन कांशीराम मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उन्होंने अपने घावों पर कस की पट्टी बांधी और अगले ही पल मोर्चे पर डट गए। उन्हें यकीन था कि शत्रु दबे पांव फिर से हमला किसी भी वक्त कर सकता है और ठीक ऐसा ही हुआ। अंदेशा बिल्कुल सही निकला। दुश्मन की एक और लहर ने चौकी पर हमला किया। इस बार पहले के मुकाबले कहीं तीव्र था। एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड से हमले हुए और दूसरी तरफ पत्थरों और धारदार हथियारों से भी हमारे फौजी साथियों पर हमले होते रहे। कई भारतीय सैनिक घायल हुए और कईयों ने वतन की आन में अपनी जान निसार कर दी। सिपाही कांशीराम हथगोले फेंकते हुए शत्रुओं में भगदड़ मचाते हुए रास्ता खाली करते हुए उन्होंने कईयों को अपना निशाना बनाया। कुछ की स्वचालित राइफल को अपने कब्जे में लेते हुए उन पर ही हमला करते हुए 30 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को उनके ही हथियारों से निशाना बनाया। लेकिन भारी तादाद में हर तरफ से होते हमले और इधर सिपाही कांशीराम की जवाबी कार्रवाई में हलाक होते दुश्मन सैनिकों के बीच मची भगदड़ में भारतीय जवानों के साथ इस हमले को कांशीराम संभालते रहे और पीछे न हटे। बुरी तरह घायल होने के बाद भी दुश्मनों से टक्कर लेते रहे। इस बीच शत्रु सैनिकों का एक कमांडर आगे का रुख करते हुए पत्थरों के पीछे से आर लेता हुआ चिल्लाया, हथियार डालो, आत्मसमर्पण करो। सिपाही कांशीराम मौके की नजाकत को समझ रहे थे कि मरना या मारना, इसके बीच का रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। वो तेजी से खाई से बाहर की तरफ निकले और उनके कमांडर की तरफ एक शेर की मानिंद झपटे, उसे आंखों में आंख डालकर पटखनी दी, अपनी संगीन से घायल करते हुए अपने शत्रु को चेतावनी दी

ऐसी जंग थी जिसमें कई मोर्चों पर दुश्मनों ने शिकस्त खाई। उनकी फौज की तादाद भले ही ज्यादा थी, असलाहे भले ही आधुनिक थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला उनके पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। जख्म सीने पर खाए लेकिन शत्रु को पीठ न दिखाई। उनकी हर तरकीब का मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मनों की जान

1962 को नेफा के सेंगजोंग की चौकी पर भारी तादाद में दुश्मन सैनिकों के हमले का बहादुरी से सामना करने, इस चौकी को महफूज रखने, यहां से शत्रुओं को पीछे खदेड़ने, दुश्मन की सभी चालों को शिकस्त देने, अदम्य साहस, गजब का सैन्य संचालन, कर्तव्य परायणता, अद्वितीय रणकौशल और वीरता के लिए पंजाब रेजिमेंट के कर्मवीर सिपाही कांशीराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी भारतीय सेना के शेरदिल जवान सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री

0: चित्तौड़ उदयपुर के पास वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी,
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: और बीच में गैप था। निचले जो आप कह रहे कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो ना गैप, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जब कर जाते हैं। उनका कोई भी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। ऐसी बेबी
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों, संगीतकारा ते समग्री सृजनहारा नशा मुक्त भारत मुहिम लई वख वख भाषावां विच संगीतक नारे ते धुन बनाउण दी अपील कीती। श्री मोदी ने उन्हां लोकां दी प्रशंसा कीती जो नशे दी दुरवरतों विरुद्ध जागरूकता फैलाउंदे ने अते नशे नाल जूझ रहे लोकां दी मदद लई अगे आउंदे ने। श्री मोदी ने त्योहारों के मौके दे मौसम दौरान स्थानक उत्पादों खरीदने की महत्ता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री समृद्धि योजना तो 35 लाख औरतों को लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम में सफाई के उपरालों कई उदाहरण साझा करद लोगों को सफाई रखने का संकल्प लेने प्रेरित किया। श्री मोदी ने कहा कि मिशन शक्ति सैट राही 108 देशों दिया 12,000 विद्यार्थियों नवीनता के खेत्र सैटेलाइट टैक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। अज हरियाणा के वक् वक् स्थानों पर मन की बात प्रोग्राम सुनाया गया। लोगों ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम समाज के हर वर्ग में नई ऊर्जा और प्रेरणा भरता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत बहुत घट ब्याज दरों से कर्जे देने के दावे को रद्द कर दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कैथल के द्यौरा पिंड आमदन बुद्ध आश्रम का नींव पत्थर रखा। केंद्रीय खपतकार मामले विभाग ने कानूनी मां भारती नारिया नारी समूह नियम 2026 सूचित कर दिया। इस संबंधित मुख्य प्रादेशिक खबर असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। हम तुम सुनोगे कुछ पंजाबी गीत श्री गार्डियंस का प्रोग्राम दिलजीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के

0: गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी

0: को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा,